0: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: Welcome back program Mid Morning Talk with Maryam Hashmi. मैं आपको खुश आमदीद कहते हैं. We welcome you and उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा. अपना भी पार्टिसिपेशन जरूर दीजिएगा. हमें बताइएगा कि आपकी जो है आपका फीडबैक क्या है और आप भी क्या सुनना चाहते हैं. जी हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है. यूके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. लंदन में होती है. अच्छा इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहूंगी क्योंकि ये इनकी बहुत सारी काविशें हैं, बहुत सारी इनकी जो अचीवमेंट्स हैं जो मैं उसमें से लिटिल बिट थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. जैसे कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म में इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किया है. इनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसल्टेंट के तौर पर ये काम करती है. इसके अलावा पीपल्स पार्टी यूके की ये वाइस प्रेसिडेंट हैं. जी हाँ उनकी खदमात जो है वो अंजाम दे रही हैं. पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल चीजों को बहुत गहराई से देखती हैं और अपनी कौम के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो करने की कोशिश करती हैं. जाहिर है जब आप एक स्टेज पे होते हैं या एक ओहदे पे होते हैं तो आपको क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कौम आपके साथ. तो ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं, अच्छे से अच्छा जो है वो करना चाहती हैं अपनी कौम के लिए. तो मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहूंगी. मिलते हैं शगुफ्ता नसरीन से. अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी.
2: Walaikum salam, Maryam. Thank you very much for such a wonderful introduction. And to be very honest, I'm very excited to be on your program.
1: Jazakallah.
2: And you are a wonderful host anyway, so we all know you.
1: Jazakallah. So, जी बट yeah. आप ही एक वंडरफुल पर्सनैलिटी हैं और डेफिनेटली कि आपको आज हमारे जोहानिसबर्ग में ज्वाइन करके आपको शगुफ्ता जी कैसा लग रहा है?
2: Absolutely wonderful, absolutely wonderful. I mean, local तो हम आपको पता है local या पाकिस्तानी मीडिया में यूके मीडिया में अक्सर जाना होता है, लेकिन जोहानिसबर्ग इट्स
1: जी एग्जैक्टली. तो ये मैं चाहती थी बिल्कुल कि आपकी आवाज आपका मैसेज जो है वो सिर्फ यूके तक ही महदूद ना रहे. आप माशाल्लाह आपको दुनिया जो है आपके पर्सपेक्टिव को समझे और आपके मैसेज को समझे. अच्छा शगुफ्ता जी स्टार्ट करते हैं आपसे. माशाल्लाह आपकी कम्युनिटी लीडरशिप माशाल्लाह आप में बहुत ज्यादा आप कंसल्टेंट है और उसमें आपकी बहुत ज्यादा स्किल्स भी है और बहुत एक्सपीरियंस भी है. मैं पूछना चाहूंगी आप क्या समझती हैं कि जो कम्युनिटी है उसकी असल डेफिनेशन क्या है, असल पहचान क्या है? क्योंकि जब हम इन फॉरन कंट्रीज में रहते हैं अपनी कम्युनिटी की पहचान बनाना कितना डिफिकल्ट है और फिर उसकी पहचान के साथ उसको मेंटेन करना ये कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए?
2: देखिए मरियम, हम सब जो है वो जाहिर बात है एक माइग्रेंट कम्युनिटी से हमारा तालुक है, पाकिस्तानी डायस्पोरा से.
1: जी
2: तो आप कहते हैं कम्युनिटी की पहचान क्या है? बेसिकली जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं या अपनी कौम से बाहर निकलते हैं तो हम उनके सफीर होते हैं और हमें उनको रिप्रेजेंट अपने मुल्क को, अपने फेथ को, अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है.
1: जी.
2: तो एक कम्युनिटी की इससे बेहतरीन पहचान नहीं है कि वो अपनी बेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो है उसको पोर्ट्रे करे जब दूसरे लोगों के साथ जाए.

0: और अपने फेथ, अपने कल्चर का पॉजिटिव फेस जो है वो लेके जाना होता है आपको और उसको इम्प्रूव करना होता है। तो आई थिंक ये हमें अपनी पहचान बनाने के लिए किसी भी जगह पे, किसी भी जगह जहाँ कम्युनिटीज माइग्रेट करती हैं, सबसे पहले उन्हें अपनी जो वैल्यूज में उनकी बेस्ट वैल्यूज हैं
1: जी
0: वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि जो आपका होस्ट कम्युनिटी है वो आपको समझ सके, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सके।
1: बिल्कुल
0: और अगर आप नहीं इंटरेक्ट करेंगे और नहीं अपनी वैल्यूज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक नई सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते।
1: बिल्कुल बेहतरीन
0: तो
1: जी
0: यहाँ हमें जो है ना ये चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं। जब हम कोई भी जाता है, जब माइग्रेशन करता है तो पाकिस्तानी कम्युनिटी, जाहिर बात है आई रिप्रेजेंट ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो ये चीजें मैंने देखी और अब तो अबाउट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जिसके अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी जानते हैं।
1: जी लेकिन ये है कि आप जाहिर हर कुछ तो 100% नहीं होता, कहीं जाहिर अप
0: बिल्कुल
1: एंड डाउन होता रहता है, लेकिन इन अप एंड डाउन में आपने अपनी इस चैलेंजिंग पर्सनालिटी को, अपने काम को जारी रखा, चैलेंजेस को फेस किया। अच्छा शगुफ्ता जी, आजकल की कम्युनिटीज में सबसे अहम जरूरत आप क्या समझती हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो हम ओवरसीज ब्रिटिश पाकिस्तानी आप काम करिए उनके लिए क्या चीज जरूरी है और उसमें कम्युनिटी का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए?
0: देखिए मरियम जी, सारी चीज तो बेस ही कम्युनिटी पे होती है और लोगों पे बेस होती है। और हमारा एक देखिए, अगर मैं pre-60 या 63 से आपको लेके आऊं, उस वक्त हमारे लोग आए थे एक वर्किंग पर्सपेक्टिव के साथ कि हमने जाना है, थोड़ा काम करना है, थोड़े पैसे बनाने हैं और वापस अपने वतन चले जाना है। तो उस वक्त उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो यहाँ रहेंगे, यहाँ पे उनको एंगेजमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, और उनकी अपनी मुश्किलात थी। हमें उन बुजुर्गों को सलाम करना चाहिए, आज की जनरेशन को बताना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह इन मुल्कों में आके मेहनत की, कितने सख्त हालात में। अगर आप अब के हालात देखें, जहाँ इतनी लेजिस्लेशन हुई है, इतने लॉज हैं, और फिर भी इस वक्त भी हम डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया और तरह की चीजें, हेट स्पीच सब फेस कर रहे हैं।
1: जी
0: हमारे बच्चे भी कह रहे हैं जो कि ब्रिटिश बोर्न है, तो आप सोचे pre-60s क्या होता होगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ही जांफिशानी के साथ, हार्ड वर्क के साथ उन्होंने मेहनत की, अपना मुकाम बनाया, और जब उनके बच्चे जाहिर बात आए और वो यहाँ सेटल हो गए, तो अब वापस वापसी का रास्ता जो था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। तो वो उस वक्त की जरूरत थी, काम करना, अपने काम से काम रखना, अपने आप को सेफ रखना, इस सोसाइटी में अपनी जगह बनाना। लेकिन अब चीजें जो है शिफ्ट हो गई। आप देखिए ना, 40-50 ईयर्स के बाद अब क्या है कि अब हमारे बच्चे जो है, वी आर ब्रिटिश पाकिस्तानीज, हमारे बच्चे जो है वो ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी है। अब हमारी जरूरतें चेंज हो गई, अब सिर्फ जॉब करना, पैसे बनाना, अपने मुल्क वापस जाना या कुछ इस तरह की चीजों से हम आगे बढ़ गए। अब हमारी जरूरत ये है, हमारे लोगों को बड़ी ही कॉन्शियसली ये चीज सोचनी है कि हमारा टाइम ऑलमोस्ट गुजर चुका और हमने एक रोल प्ले किया, लेकिन इससे फर्दर हमारे बच्चों का फ्यूचर है, जो हमारी इन कमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए हम एज ए बुजुर्ग क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो उसमें हमारा इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, और उसके साथ यहाँ की जो वैल्यूज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, अपनी वैल्यूज को शेयर करना, अपने फेथ की वैल्यूज को शेयर करना। लेकिन सबसे बड़ी चीज, चूंकि इन कंट्रीज में बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुत सारी हर चीज के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो मोस्ट सक्सेसफुल सिस्टम है गवर्नेंस का वो है डेमोक्रेसी, वो थ्रू पॉलिटिक्स। तो हमें पॉलिटिक्स में पॉजिटिवली और हिस्सा भी लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको अंडरस्टैंड भी कर, एजुकेशन है तो ले। मैं ये नहीं कहती कि सब आज ही इलेक्शन में खड़े हो जो, सब आज ही मीटिंग्स में चले जाओ, मगर मैं कहती हूँ कि आप सिस्टम को समझें और अपने बच्चों के अंदर जो है ना, आप इसके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा करें। जब हमारे, चूंकि हमारा थोड़ा कल्चर भी है बैक होम में, पॉलिटिक्स भी आपको पता है थोड़ी गड़मड़ हुई हुई है, तो हम वही चीज, वही जुमला यहाँ कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो गंदी है, पॉलिटिक्स तो करप्ट है, पॉलिटिक्स तो खराब है। पॉलिटिक्स खराब नहीं है, ये सिस्टम खराब नहीं है, लोग आते और जाते रहते हैं। प्लीज इन दो चीजों में फर्क करें।
1: अच्छा जी, ये आपने बड़ी प्यारी बात किया. यहाँ पर ही मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि जिस दौर की आप बात करें, आज भी पॉलिटिक्स में जाना विमेन के लिए बहुत चैलेंजिंग है. जिस दौर में आपने ज्वाइन किया, आपको कितनी डिफिकल्टी आई होगी, कितनी मुश्किलात आई होंगी, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल. देखें, डिफिकल्टी हालांकि बहुत साइड्स में होती है, आपको पता है क्लास सिस्टम्स होते हैं, मैन को भी आती है, लेकिन विमेन को ज्यादा आती है. उसके में हमेशा सब कहते हैं कि आप औरत की क्यों बात करते हैं, तो मैं एक बात बड़ी वाजह करना चाहती हूँ. जब मैं एजुकेशन कर रही थी, या मैं स्ट्रगल थी, या मैं एक पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर मेरी स्ट्रगल थी, तो मैंने कभी सेटअप नहीं किया था कि मैं सिर्फ औरतों के लिए बात करूंगी. लेकिन जब मैंने औरतों का ज्यादा इस्तेहसाल होते देखा, मतलब कंपैरेटिवली जब आप बात करते हो तो कंपैरेटिवली करते हो, तो ऐसा नहीं है कि हर औरत को प्रॉब्लम है या हर आदमी को, लेकिन बिटवीन मैन एंड वुमेन विच सेक्शन इज अफेक्टेड मोर. सो वो मैंने देखा कि वुमेन हर लेवल पे जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी. हाँ, अगर आप बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है आपका, तो ऑब्वियसली यू डोंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. मुझे अपने लिए भी ये है कि जब मैंने शुरू की, और मैं बहुत ही दुनिया की खुशकिस्मत तरीन यंगस्टर्स थी कि मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का साथ मिला. जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स में आंखें खोली, तो मैंने उन्हीं की पार्टी ज्वाइन की, उन्हीं की स्टूडेंट मूवमेंट का मैं हिस्सा बनी, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्हीं के पेपर से, उनके जो फादर का पेपर उन्होंने शुरू किया था मुसावात, डेली मुसावात, उसी से मेरा जर्नलिज्म का आगाज हुआ. मैं पार्लियामेंट और सेनेट कवर करती थी, तो आई वॉज लिटरली विद बीबी एज मैनी आवर्स शी वॉज देयर.
1: क्या बात है.
0: तो
1: शगुफ्ता जी, पॉलिटिक्स में भी आई, अब आपने जर्नलिज्म में भी आई, प्रेशर कितना ज्यादा था? क्योंकि जर्नलिस्ट पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और फेयर जर्नलिज्म करना जो है वो भी एक जरूरी चीज है. कैसे मैनेज किया आपने इन सबको?
0: मैनेज ऐसे किया कि देखिए, हम एक हमारा जो एक आपको पता है जर्नलिज्म में भी ब्रांचेस हैं, तो हम हमेशा लेफ्ट के जर्नलिस्ट रहे, तो लेफ्ट का जर्नलिस्ट जो था वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था. सो आई वाज लकी इन दैट सेंस. एक तो पेपर पार्टी से अटैच था उस वक्त, और दूसरा चूंकि मेरे जो उस्ताद हैं मुन्नू भाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और बहुत सारे नुसरत जावेद साहब माशाल्लाह, ये हम छोटे छोटे थे और इन्होंने हमें गाइड किया, वैल्यूज दी, और इतने एथिक्स दिए. आप यकीन करें कि आजकल जाहिर बात है चीजों में चेंज आती है, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि कैसे येलो ब्लैक पता नहीं कौन कौन सा जर्नलिज्म हो रहा है, और जिनका जर्नलिज्म से ताल्लुक भी नहीं है उनको जर्नलिस्ट बना के प्रेजेंट किया जाता है. जो कि लेकिन आप एक डॉक्टर, एक इंसान जब तक वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करता, आप उसको डॉक्टर नहीं कहते.
1: Exactly.
0: इस कंट्री में आप 10 कोर्सेज और डिग्री नहीं करते तो आप टीचर नहीं बनते.
1: लेकिन शगुफ्ता जी, पैशन भी तो देखे ना, हर बंदा जो सीखना चाहता है, आप उसका लर्निंग प्रोसेस भी, तो वो अगर सीख रहे हैं तो यही हमारी कम्युनिटी की खास बात है, हमारे लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि वो बहुत ज्यादा सीखते हैं, हर चीज वो बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं. अच्छा शगुफ्ता जी, बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन है. यंग जनरेशन है, हमने पाकिस्तान को की मोहब्बत उनके दिलों में डालनी है, जाहिर है उनकी ब्रॉटअप आपने माशाल्लाह वहां पे की है, आप माशाल्लाह पूरा लीड कर रही हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कोई ऐसी एडवाइस आप प्लीज पेरेंट्स को जरूर दीजिए कि किस तरह वो अपने मुल्क से मोहब्बत, क्योंकि अगर आपने बात करते हैं ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा जरा पाकिस्तान से जरा, क्योंकि उनको ये होगा कि हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत कैसे डालें उनके दिल में?
0: देखिए मरियम, मैं चूंकि हर बात की मेरे पास एक शुरुआत होती है, तो मैं शुरुआत से बताती हूँ कि कोई भी दरख्त अपनी जड़ों के बगैर ऊपर नहीं जाता.
1: क्या बात.
0: वही रह जाएगा या जल जाएगा.
1: सही.
0: आपके बच्चों की जो फाउंडेशन है ना, फखरिया तौर पे आप कहेंगे कि यो मदरलैंड इज पाकिस्तान. आप उनके दिल में उनकी मोहब्बत इंस्टॉल करें. पॉलिटिक्स पार्टीबाजी को छोड़ दें, पार्टियां आती और जाती रहती हैं. ये मैं आप पहले भी अर्ज करती हूँ, मैं यूके में भी लोगों से कहती हूँ कि पार्टी सिस्टम को तबाह ना करो.
1: जी जी.
0: लीडर्स आते और जाते रहते हैं.
1: बिल्कुल.
0: इसी तरह मैं पाकिस्तानी जो हमारा डायस्पोरा, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है, मेरी भी जाहिर बात है जब वोट होता है तो आपकी एफिलिएशन भी होती
1: Exactly.
0: है. हर इंसान का वोट है, चाहे मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्टिल वोट तो है ना मेरा.
1: बिल्कुल.
0: मैंने जिसको वोट देना, ऑब्वियसली आई हैव पर्सनल एफिलिएशन, या मुझे अच्छा लगती है वो पार्टी, लेकिन पार्टी से कत नजर, क्योंकि आपके बच्चों ने वहां जाके वोट नहीं डालना. उनके अंदर आप मुल्क में पार्टी की वजह से تنفر پیدا نہ کرے, آپ ان کے دل میں مادر وطن, وہ آپ کی ماں ہے. میں نے کہا نا, ہم جہاں بھی چلے جائیں, ہم برٹش پاکستانی, سو آئی لو برٹن. یہ یو کے نے مجھے ایکسپٹ کیا ہے تو میں یو کے کو دل سے ایکسپٹ کرتی ہوں.
1: کیا بات ہے,
0: اپنا ملک. لیکن میری ماں جو ہے
1: وہ
0: میری جڑیں وہاں پہ, میرا جو جڑ ہے وہ پاکستان میں, اور میرے بچوں کی. اب آپ دیکھیں مریم, میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ آج سے 1000 سال کے بعد بھی جو آپ کی فیوچر جنریشن ہے وہ فارم پہ برٹش پاکستانی لکھے گی ایز آئیڈینٹیٹی. سو یو ول نیور سیپریٹ پاکستان فرام یور فیملیز اور فرام یور where you are, or British
1: national. آج کے ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہ, دیکھیں ہم جوہانسبرگ میں سے اردو ٹرانسمیشن کا اپنا پروگرام کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ہم اپنے ملک کو پروموٹ کر سکیں, اس کی لینگویج کو پروموٹ کر سکیں, ہم وہ اپرچونیٹی ضرور اویل کرتے ہیں. اچھا شگفتہ جی, آپ سے اب آپ کے پرسنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت لکھتی بھی ہیں, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ آپ ماشاء اللہ کچھ سنانا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں, یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں, اور شوق بھی بتائیے گا کہ کہاں سے ہوا, امی سے ہوا, ابو سے ہوا, کسی فیملی ممبر سے آپ کو شوق ہوا لکھنے کا, اور کیا لکھتی ہیں؟
0: دیکھیں میرے پیرنٹس, چونکہ ان کی یہ جو دنیا والی سکولنگ نہیں تھی, لیکن اللہ کی طرف سے ان کو بہت زیادہ نالج تھی, جو کہ ہمارے بزرگوں کی ایک میراث رہی ہے. تو بہت میرے پیرنٹس چاہتے تھے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, لیکن جیسے جیسے میں گرو اپ ہوئی, جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ محترم منو بھائی بہت بڑا نام ہے جرنلزم کا, پوئٹری کا, ان سے ہوئی. اور میرا سب سے پہلا جو میں نے انٹرویو کیا تھا وہ پروین شاکر صاحبہ, جو کہ برے صغیر کی پاکستان کی بہت بڑی فیمیل پوئٹریس رہی ہیں. پھر وہ ظاہر بات ان کی ایک ہاتھ سے ملا تھوڑی.
1: شگفتہ جی, ہم انشاءاللہ ان سے ہی بات کی شروعات کریں گے. ٹائم ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ویل سی یو آفٹر جسٹ ا ویری ویری شارٹ بریک. اسٹے ٹیون وتھ سلام میڈیا فرام جوہانسبرگ.
0: Thank you.
2: Right now in lands many of us feel deeply connected to, a mother holds a sick child, worried and fearful as she knows her nearest hospital has been destroyed. This is the mother we go beyond borders to reach. Doctors Without Borders is there in the world's toughest places. We go where others can't or won't, and we go immediately. When you give to us, we go even further. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and support Doctors Without Borders today. Doctors Without Borders, we go there.
3: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine, and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people, and tourists, with its 4-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach, and other amenities, your stay will be truly unforgettable, as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415 or visit www.albaytlodge.co.za.
4: In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861-786-243 for more information.
5: Hey, Ghulam.
6: Yeah?
5: Did I return your lawnmower last month?
6: No, bhai, you didn't.
5: Oh, no. Now what'll I do? I wanted to borrow it again, man.
7: With Randree Jewelers, you won't have to borrow or lend because the prices are so well trimmed on all gold and diamond jewelry. Alternatively, we could remake your old jewelry into a brilliant new design. Visit Randree Jewelers at 151 Stephen Slamini Road, Musgrave, Durban. Randree Jewelers, the family name you can trust.
8: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river. reconnecting communities to nourishment, education, dignity and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 rand in Africa or a borehole for 65,000 rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst. Reconnect the soul with Africa Muslims Agency.
6: Are you banking with convenience, transparency, and flexibility? With Al Baraka Bank's transactional banking account, you can enjoy convenient everyday banking designed around your needs. Benefit from zero fees on point-of-sale transactions and manage your banking easily through Al Baraka's secure mobile banking app and internet banking platform. From everyday payments to managing your personal or business banking, Al Baraka makes banking simple, transparent, and convenient. Visit albaraka.co.za to learn more. Al Baraka, your partner bank. Al Baraka Bank Limited is an authorized financial services and credit provider.
9: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
1: जी वेलकम बैक करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी लाइव फ्रॉम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका. जी हाँ टाइम हुआ चाहता है 11:53 और हमारे साथ मौजूद है शगुफ्ता नसरीन लंदन से. और जी शगुफ्ता जी आपसे बात हम जारी रखेंगे. बात हो रही थी आपकी शायरी की, आपके कलाम की, तो जरा बताइएगा माशाल्लाह आपकी फेवरेट जो थी प्रवीण शाकर, उनको कौन नहीं जानता, उनकी शायरी को कौन, हर दिल को छू जाती है उनकी शायरी. तो आप उनसे इंप्रेस हुई और आपने खुद लिखना शुरू किया, तो आप जरा कुछ सुनाइए हमारे देखने और सुनने वालों को.
0: थैंक यू मरियम. जाहिर बात है मैं बेसिकली तो एक राइटर हूँ, तो पोएट्री हमेशा पसंद रही, मैसेज अच्छा लगता रहा. बहुत शॉर्ट उसमें आप एक मैसेज दे सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम होता है तो कभी कभार लिख लेती हूँ. अभी कोई मैं प्रॉपर उससे नहीं लिखती. और एक मैं जस्ट आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका एक मैसेज मैं रिपीट करना चाहूंगी. sure. कि प्लीज मैं अपने सब जिस भी कंट्री में हमारी कम्युनिटी रहती है पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पॉलिटिक्स को पॉजिटिव वे में डिस्कस करें अपने बच्चों के सामने और उनको लेके आए, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी खाली चेयर जो है वो आपको हुकूमत नहीं दिलाती. अगर आपके बच्चे उन सीट्स पर नहीं बैठे तो फ्यूचर में लेजिस्लेशन में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा. और जारी बात है हर कम्युनिटी अपने हिसाब से, अपने फेथ और वैल्यू के हिसाब से अपना नुक्ता नजर रखती है और फिर वो लेजिस्लेशन बनती है. तो प्लीज इस बात को याद रखें कि एम्प्टी चेयर नेवर स्पीक्स फॉर यू, यू हैव टू बी ऑन दैट सीट. इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसको बकायदा मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं बात करती हूँ कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इस पे, लेट्स टॉक पॉलिटिक्स. तो उसमें जब ये लोग डिस्कस करें उसमें उसके प्लस और नेगेटिव सब सामने आते हैं. लेकिन हमारी इस वक्त की जरूरत है और ये इस्लामिक चीजों के साथ भी कंपेटिबल है. आप देखें इस्लाम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है. बैत जो है बेसिकली वन वोट लिया जाता था, वोटिंग के जरिए आपकी खिलाफत.
1: सही. तो शगुफ्ता जी हमारे साथ हैं और शगुफ्ता जी ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि आप जहां पर भी इस दुनिया में मौजूद हैं आपका जो मैसेज है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. हर चीज को आप पॉजिटिव लें ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आ सके. तो ये थी हमारे साथ शगुफ्ता जी. शगुफ्ता जी का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई है, इंशाल्लाह वो हमारे साथ दोबारा ज्वाइन किया. जी शगुफ्ता जी बोलिएगा.
0: बस मैं ये चाहूंगी कि ये एक ये हमारे वक्त की जरूरत है. इस मैसेज को जितना भी आप आगे कर सकते हैं जरूर करें और मेरी भी कोशिश है कि अपने लोगों के अंदर ये शोर पैदा किया जाए कि वो सिस्टम में हिस्सा लें और उसके बारे में बकायदा जो है वो एजुकेशन लें.
1: राइट.
0: पोएट्री की आपने बात की थी, मैं बहुत थोड़ा अभी लिख रही हूँ लेकिन अभी विमेंस डे गुजरा
1: जी.
0: तो उसपे मैंने एक बहुत छोटी सी लिखी थी, स्टिल अंडर प्रोसेस है लेकिन एक छोटी सी मैंने नज़म लिखी थी कि क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं. क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं.
1: क्या बात.
0: मेरी माँ मुझे चांद कहती थी, मेरा बाबा फख्र से देखता था मुझे. अपने बच्चों की मैं हूँ जन्नत, क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं. आपकी एक आवाज पे चली आती हूँ, आपकी एक आवाज पे चली आती हूँ मैं, आप सबकी भी बहन हूं मैं. क्या हुआ अगर एक औरत हूं मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं. मेरे वजूद से है इस दुनिया को दुआ मिला, मेरे वजूद से इस दुनिया को दवाम मिला, जन्नत को जिताया गया मेरे लिए। मेरे बगैर ना घर का तसव्वुर ना माशरे का वजूद, मेरे बगैर ना घर का तसव्वुर ना माशरे का वजूद, अपने भाइयों के शाना बशाना खड़ी हूँ मैं, क्या हुआ अगर एक औरत हूँ मैं, ना जाने कितनों का हौसला
1: हूँ मैं। क्या बात है शगुफ्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत मैसेज, क्या हुआ अगर एक औरत हूँ मैं, यही आपकी जो है हौसला हूँ मैं। ये बहुत मतलब खूबसूरत और बड़ा इनकरेजिंग है, ऐसी ही इनकरेजिंग पर्सनालिटी रहिएगा शगुफ्ता जी। हमारी बहुत सारी दुआएं, वेल विशेज आपके साथ हैं, आप इसी तरह तरक्की करती रहें, दूसरों के लिए जो है आप रहनुमाई का जरिया बनते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू।

0: We work hard to build our homes, businesses, and futures. Protecting them shouldn't mean compromising the values that matter most. ACNE Group of Companies, a Muslim-owned business, offers our short-term diamond insurance covers founded on ethical principles, transparency, integrity, and responsible service. This allows us to provide insurance solutions that align with ethical values while maintaining the protection and service standards you expect. To ensure complete peace of mind, all premiums, claims, and premium investment funds are managed through designated Sharia-compliant bank accounts, reflecting our ongoing commitment to ethical and responsible financial practices. From your first inquiry to the moment you need to claim, we are committed to providing professional, transparent, and reliable support. Choose insurance that reflects your values while giving you confidence and peace of mind. Speak to ACNE Group of Companies today to learn more about our commercial, engineering, professional indemnity, and liability diamond insurance covers. Call Rafik Isaacs on 084-822-6570. ACNE Group of Companies comprises authorized financial services providers under FSP numbers 43281, 45553 and 45915. Products are underwritten by New National Assurance Company Limited, FSP number 2603.
1: Shimmer, sparkle, captivate. Nothing less than a masterpiece. Droplets of gold inspires precious design, platinum bursts with intricate freshness, and every pure diamond becomes more than just a girl's best friend. Voda Gold Gem Jewelers, where timeless dreams become a reality. Come to us. We tailor-make designer gold, platinum, and diamond jewelry. Trade in or remodel your old gold. Clad yourself with classy name-branded watches. We offer insurance valuation and Freezer card calculation. Visit us at 534 Ridge Road, Overport, or call 031-208-9142. Voda Gold Gem Jewelers, manufacturers of fine gold and diamond jewelry.
2: Kids these days are smart, and when you're competing for their attention against their smartphones, you need to make smart choices, like using Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil in every meal you make. It's naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether you're cooking, frying, or baking, you get the great-tasting results that'll get their attention faster than the latest app. And if that doesn't work, change the Wi-Fi password. Sunfoil. Now we're cooking.
3: When you give water, you bring life to drought-affected communities, providing fresh water for drinking, cleaning, and growing. Your support helps Islamic Relief implement water, sanitation, and hygiene projects, providing clean water to communities around the world. Donate now to Islamic Relief.
4: Listen to something fresh. Listen to Salam Media. It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism.
5: Gee, welcome back, program. A good mid-morning talk with Maryam Hashmi, live from Johannesburg. Salam Media. Gee, haan, aapko khush amadeed kehte hain. Aur hamare saath, hamari fourth guest maujood hain, jinke baare mein main aapko batana chahun. That guest is very important and very close to my heart because she is my colleague. And unka experience bahut zyada hai. Aur Pakistan ke different channels pe unhone kaam kiya, broadcast journalist hain. Aur unka journalism style jo hai, wo hame bahut pasand hai. Aur हम जो है उस स्टाइल के दीवाने तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आज हमारी जो है हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूं कि इस प्रोग्राम को उर्दू में करने का मकसद हमारा यही है कि हम इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि अपनी जुबान को भी प्रमोट कर सकें तो हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से आइए उनको वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम नीलम
6: वालेकुम अस्सलाम मरियम कैसी हैं आप और आपके तमाम जो सुनने वाले हैं देखने वाले हैं उन सबको भी सलाम
5: वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया नीलम आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला उम्मीद है आज की डिस्कशन जो है वो सबको बहुत पसंद आएगी और लंदन का वेदर कैसा है वैसे तो मैं सबसे पूछती हूँ आप क्या लेती हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो विंटर है और बड़ा अच्छा अब तो वेदर स्टार्ट हो रहा है समर की तरफ हम जा रहे हैं तो आप सुनाइए कि लंदन के वेदर की कोई हाल अहवाल बताइए जरा हमें
6: ये तो आपने जो है ना वो सबसे ज्यादा इस वक्त जो दुख है लंदन के रहने वालों का इंग्लैंड के रहने वालों का उसके ऊपर बात शुरू कर दी है तीन हीट वेव्स इस बार हम देख चुके हैं जो कि बड़ी एक्सट्रीम हीट वेव थी और लंदन में इसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. मई जून जुलाई अगस्त वो सब में हीट वेव रही है और अभी भी थंडरस्टॉर्म्स की जो वार्निंग है वो दी गई है, लेकिन उससे भी बजाय के फायदा और नुकसान ही होना क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई वेदर रहा, बहुत ज्यादा हॉट वेदर रहा है और आने वाले सालों में इंग्लैंड के लोगों को बड़ा इसके लिए लाइफ सीरियस किस्म की लाइफ स्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी. अगर मौसम का अहवाल आप जानना चाहती हैं तो वो इस वक्त अच्छा नहीं. अभी आजकल थोड़ी सी गर्मी कम है लेकिन हमें बताया जा रहा है मेट ऑफिस की जानिब से कि एक और हीट वेव है जिसका भी सामना करना है हमें.
5: चलिए आपको स्ट्रांग बना रहे हैं वेदर की कंडीशंस जो है, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में, लंदन के बारे में यही मशहूर था, यही फेमस है कि बहुत ठंड होती है वहाँ और जब ये स्टार्ट होती है तो जाती बड़ी मुश्किल से. चलिए इस विंटर को और हम विंटर को इंजॉय करें, आप इस समर को इंजॉय करें और बड़ा अच्छा जो है ये कॉम्बिनेशन जो है वो है. अच्छा नीलम, बात करते हैं आज के टॉपिक की. बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है. बात मैंने स्पेशली आपको इसलिए लिया कि हम लंदन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है. आप क्या समझती हैं सबसे पहले कि इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है और फिर इसके रिस्क जो हैं वो क्या हैं और कैसे जो है इस पे अटैक्स को जो है रोका जा सकता है, उस पर भी हम बाद में बात करें, लेकिन ये क्यों हो रहे हैं, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं?
6: सही. अच्छा मरियम, इस्लामोफोबिया जब हम कहते हैं ना कि ये बढ़ रहा है तो आई थिंक हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं. ये हमेशा से था, ये हमेशा से है. चूंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, चूंकि अब वेबसाइट्स हैं, न्यूज मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो रिपोर्ट हो जाते हैं इंसिडेंट. क्या आप बताएं कि 70s और 80s में यहाँ पे इमिग्रेंट फैमिलीज थी? आप सिर्फ अगर पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लें, वो आपको हॉरिफिक स्टोरीज नहीं बताती कि जब वो इस मुल्क में पहली बार आए थे क्या क्या उनको सहना पड़ा था. हलाल गोश्त यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता था, मस्जिद नहीं थी, किस तरह से जो बच्चे स्कूल जाते थे उनको किस तरह से जो दूसरे बच्चों की जानिब से बुलिंग का सामना करना पड़ता था उनके रिलीजन की वजह से. तो ये सारे इंसिडेंट्स इवेंट्स हमेशा से रहे हैं. अब लोगों में अवेयरनेस ये आई है कि वो रिपोर्ट करते हैं. मैं आपको टेल मामा की ही अगर जो स्टैट्स हैं वो शेयर कर देती हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो टेल मामा हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी हम ये बताएंगे सुनने वालों को कि वो सारे जो इस्लामोफोबिक इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक है, पुलिस को बताते हैं, लेकिन ये भी जो इदारा है ये तमाम इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करता है. उसकी जो स्टैट्स है फर्स्ट सिक्स मंथ्स ऑफ 2026 यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 131 इंसिडेंट्स हुए हैं एंटी मुस्लिम हेट के, हेट स्पीच के, इस्लामोफोबिक इवेंट्स कह सकते हैं. खवातीन को टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया, राह चलते, बसेस में, ट्रेन्स में, आपकी वर्क प्लेसेस पे हूटिंग की जा रही है, पार्किंग स्पॉट्स पे, शॉपिंग सेंटर्स में. और ये 2023 में ओवरऑल 1000 जो इवेंट्स थे वो रिपोर्ट हुए थे और यहाँ 2026 में सिर्फ 131 इंसिडेंट्स फर्स्ट सिक्स मंथ्स में रिपोर्ट हुए. लेकिन ये वो है, ये मैं ये नहीं कह सकती कि ये अभी इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, ये हमेशा से था, लेकिन अब लोगों में कम अज कम ये अवेयरनेस आ गई है कि अगर आप मुझे मेरे रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट करोगे तो मैं उसको रिपोर्ट करूंगा और मैं आपको भी एक्सपोज करूंगा.
5: सही, आपने जैसे बात किया सोशल मीडिया की, आप क्या समझती हैं ये जो सोशल मीडिया है इसने इसको बढ़ाया है या इसको कम करने में इसका थोड़ा किरदार है?
6: अच्छा, सोशल मीडिया ने एक तरफ तो इसका इसको रिपोर्ट किया जा रहा है तो ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि ये गलत है और हमारे बरतानी मुख्तलिफ क्योंकि डाइवर्स कंट्री है, मुख्तलिफ रिलीजन और एथनिसिटीज के लोग यहाँ पर हैं, वो इसको कंडेम भी करते हैं, डिस्करेज भी किया जाता है. पुलिस और हुकूमत भी ऐसे कवानीन लाने की कोशिश करती है कि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जाए. लेकिन वहीं सोशल मीडिया पे जब टॉमी रॉबिन्सन जैसे जो फिगर्स हैं, या रिफॉर्म यूके की जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और उनकी अगर आप रैलीज देखें, वो जो राइट द किंगडम मार्च हुआ था आपको यकीनन याद होगा मई में, किस तरह से वहां पर एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जो कि एंटी मुस्लिम हेट को के जज्बात को भड़काती है, तो वो भी सोशल मीडिया पे हर जगह पहुंचते हैं. फिर वहां से एक एक्शन होता है तो फिर मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं वहां से भी एक रिएक्शन आता है. तो सोशल मीडिया एक पूरे एनवायरमेंट को हॉस्टाइल बना रहा है. पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ रहने वाले जो नेबर हैं जो कि नॉन मुस्लिम है वो मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं. कम्युनिटीज को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता था. अब चूंकि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आता था, कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग न्यूज सुनते हैं, नहीं सुनते. अब सोशल मीडिया, फोन तो आपके हाथ में है ना,
5: बिल्कुल
6: मुझे फोन पे तो नजर आ ही जाएगा. मैं ना भी देखना चाहूँ तो एल्गोरिदम या انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ یا کہیں نہ کہیں وہ نیوز میرے سامنے آ جائے گی اور وہ سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرتی ہے. تو سوشل میڈیا کا یہ کردار ہے بڑھانے میں نہیں لیکن ہر چیز کو دکھانے میں اور اس کو ملٹی پلائی کرنے میں سوشل میڈیا کا کردار ضرور ہے.
5: صحیح ہے, لیکن اس کو ہم پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی, کیا ایڈوائس دیں گی کہ اس کو کس پازیٹیو وے میں یوز کریں سوشل میڈیا کو؟
6: آئی تھنک مریم, سب سے پہلے تو میں جو مسلم کمیونٹیز ہیں یہاں پہ, اور مسلم ہی نہیں میں یہ کہوں گی کہ نان مسلم بھی ہیں, اگر ہندوز ہیں, سکھ ہیں, ایون وائٹ ایتھنیسٹی کے جو لوگ ہیں, کسی کو بھی, کسی بھی انسان کو اس کی ریلیجن یا اس کی ریس یا ایتھنیسٹی کی بنیاد پر کبھی بھی کسی بھی قسم کے تعصب کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے اسکولس میں جہاں ورک شاپس ہوتی ہیں, بچوں کو سکھایا جاتا ہے, جہاں پہ کبھی کبھی ہم ہوتا ہے کہ سال میں ایک دن منا لیا, جی ہم نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن منا لیا, یا کسی اور ریلیجن یا ایتھنیسٹی کے خلاف اگر کوئی نفرت یا تعصب ہے اس کے خلاف, نہیں, اس کو سال میں ایک دن کے لیے محدود نہ کریں. ایک کانسٹنٹلی اسکولنگ اور اویئرنیس اور بار بار بار بار لوگوں کو بتایا جائے کہ اٹ از ناٹ رائٹ کہ آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں اس کے ریلیجن کی وجہ سے. بار بار اس حوالے سے ایڈس یوز کیے جا سکتے ہیں, پروموٹ کیا جا سکتا ہے ایسی کیمپینس کو, سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو یوز کیا جا سکتا ہے, پبلک فگرز کو یوز کیا جاتا ہے. اگر وہ ایک شیمپو یا ایک پرفیوم کی باٹل بیچنے کے لیے اس پیغام کو گھر گھر پہنچا دیتے ہیں تو یہ اچھا پیغام ہی پہنچایا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹس اس میں انویسٹمنٹ کریں اور اس کو دیکھیں گے کس طرح سے زیادہ لوگوں تک اس کی اس پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے.
5: آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے نیلم, کے گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ چیزیں اقدامات ہونے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ انڈیویجول لیول کی بات کریں, جیسے انفلوئنسرز کی آپ نے بات کی ہے, کہ انفلوئنسرز بھی یہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پازیٹیو میسج جو ہے وہ پوری دنیا کو دیا جا سکتا ہے, کہ اگر کہیں نہ کہیں ہمارے پیچھے یا یو نو بیک سائڈ پہ ہماری کہیں سوچ ہے انکانشیسلی کہ یہ ہے اسلاموفوبیا, اور بہت سارے لوگ جو وہاں پہلے موو کیے تھے اور اب ان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ پچھلے سے کہیں یا تو زیادہ ہیں یا پیچھے سے بہت کم ہے. جیسے آپ نے بات کیا کہ حلال فوڈ بہت کم اویلیبل ہوتا تھا, لیکن ماشاءاللہ اب وہاں ہر جگہ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ہمارے اسلام کے مطابق جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا, ینگ بچے جو ہیں جب ہم اسکولس میں جاتے ہیں, اسکولس میں ڈفرینٹ کلچر کے بچے ہیں, ڈفرینٹ ریلیجن کے بچے, انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے ان ساری چیزوں کا, وہاں پر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی کیا مین وجہ ہے اس ڈسکریمنیشن کی؟ کیا وہاں کا سسٹم ہے, ایجوکیشن ہے, یا وہاں پہ آپ فیملیز کو اس میں انوالو سمجھتی ہیں؟
6: آئی تھنک کوئی بھی ٹیچرس تو یہ بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے رہے کہ آپ کسی کو اس کے کلر کی وجہ سے بلی کریں یا اس کے ریلیجن کی وجہ سے, اس کے فیتھ کی وجہ سے. یہ گھروں کی ہی تربیت ہوتی ہے جو اسکولس تک آ جاتی ہے, اور چاہے اسکولس جتنی بھی پالیسیز بنا لیں یا سختی کر لیں, کہیں نہ کہیں بچوں کی جو اپ برنگنگ گھر میں ہو رہی ہے, جو سوچ ان کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے, وہ ایک دوسرے اپنے جو کلاس میٹس ہیں ان کو کسی نہ کسی بات پہ وہ بلی کر دیتے ہیں. اور بچے جو اس ایج میں ہوتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ بلنگ نہیں کر رہے ہوں گے, وہ کسی کے کلر کی وجہ سے کر رہے ہوں گے, کسی کے بولنے کے انداز کی وجہ سے بلنگ کر رہے ہوں گے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہوتا ہے یہ اسکولوں میں. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ بچپن سے ہی کچھ بچے اگر ان کو صحیح ان کی اپ برنگنگ نہیں ہو رہی تو وہ باقی بچوں کے لیے کس کس طرح سے ٹراما کا باعث بنتے ہیں. تو آئی تھنک اگر ایسا کوئی بچہ سامنے آتا ہے تو اسکولس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کے لیے کوئی ورک شاپس کا جو ہے وہ اہتمام کریں, اس کے پیرنٹس کو ساتھ بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسا رویہ ایک ڈائیورس کنٹری میں جہاں پہ وہ آپ دیکھ رہا ہے کہ ایک نیبرہڈ میں آپ کو مسلم بھی نظر آ رہا ہے, جیو فیملی بھی نظر آ رہی ہے, آپ کو ہندو بھی سیکھ بھی, اس ڈائیورس کنٹری میں وہ 7 سال کا, وہ 11 سال کا, وہ 15 سال کا بچہ ایسے کیوں سوچ رہا ہے کہ کوئی اس سے کمتر ہے, اور اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے.
5: رائٹ, زبردست. اچھا نیلم, بہت ساری کمیونٹیز ہیں وہاں پر, یو کے کی میں بات کروں, لندن کی میں بات کروں, ڈفرینٹ کنٹریز کی, لائک ہم جوہانسبرگ کی بھی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں, ان میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو رسپیکٹ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے یا اس کو سکھانے کے لیے, جس میں ریسزم نہ ہو, جس میں ڈفرینٹ ڈسکریمنیشن نہ ہو, تو ان چیزوں کو مینٹین رکھنے کے لیے سب سے پہلا اقدام ایز اے پرسن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
6: ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اکلے کل نہیں سمجھنا چاہیے. میں اس کو اگر کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ ہی آخر ہے, کسی کا کوئی بھی سٹانس ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, اگر وہ سٹانس وہ آپ پہ امپوز نہیں کر رہے अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं अपने अकायद के साथ जी रही हूँ और मैं अपने नेबर को जो है वो फोर्स नहीं कर रही, उसके ऊपर अपना जो अकायद है वो इम्पोज नहीं कर रही, तो ये मैं अपने रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ और मैं ये उनकी जो रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। इस्लाम तो सबसे पहले सिखाता ही यही है कि जो हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे तर्ज जिंदगी है मुख्तलिफ है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो जब मैं हर किसी इंडिविजुअल को अपने आप से शुरू करना है, हो सकता है कुछ लोग आप उनको इज्जत दें तो उनको इज्जत रास भी ना आए, लेकिन वो आपका मसला नहीं है।
5: बिल्कुल,
6: आप कम से कम अपनी जात की हद तक जो है वो लोगों को इज्जत दें अगर आपने इन डाइवर्स कम्युनिटीज में जीना है, वरना तो पाकिस्तान में आप रहते आपके मतलब 90% लोग आपके इर्द गिर्द मुस्लिम थे। बट अगर आप सिर्फ रिलीजन के कॉन्टेक्स में बात कर रहे हैं और ये जो एथनिसिटी का जो डिफरेंस है यहाँ पे, तो उसमें यही है कि आप अपनी अकायद के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करें और दूसरों के अकायद का मुकम्मल तौर पर एहतराम करें। तो आई होप के वो भी एक ना एक दिन, बहुत सारे लोग करते भी हैं इस्लाम का, आप मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस में यहाँ पे काम करते हैं, रमजान होता है वो उनको समझ होती है कि वो आपका रोजा है, वो बड़ा केयर करते हैं कि चले आप वर्किंग आवर्स तो यहाँ पे कम नहीं होते मुस्लिम कंट्रीज की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिगार्ड जरूर किया जाता है। तो यहाँ पे भी कम्युनिटीज में एक गुंजाइश और एक स्पेस पैदा हो रही है और मुस्लिम्स के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और इस्लामोफोबिया क्या है? इस्लाम का डर, इस्लाम से मुतालिक मिसकंसेप्शंस और जो कि फैलाए गए हैं मतलब मुख्तलिफ कैंपेन्स के जरिए से, तो वो डर जब आप उनका खत्म कर देंगे कि हम तो आप जैसे ही लोग हैं और हमारा तो रिलीजन हमें इंसानियत का एहतराम और लोगों का कहता है कि मतलब आपकी जबान से भी किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो इतना खूबसूरत रिलीजन है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम आपको कुछ नहीं कह रहे, तो ये जब आप मिसकंसेप्शन दूर करते हैं तो डेफिनेटली अब इंग्लैंड में काफी स्पेस पैदा हो भी रही है इस्लाम के हवाले से।
5: तो ये जो हमारा स्लोगन है हमारा, जियो और जीने दो, मेरा ख्याल है इस पे जो है हमें अपनी जिंदगी को फोकस करना चाहिए, अपनी जिंदगियों को लेकर चलना चाहिए कि खुद भी जिए, खुद भी अच्छा इखलाक जो है आप रखें, अच्छी बात रखें और लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक जो है वो इस्तवार रखें। नीलम के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, टाइम हो जाता है वे बहुत छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया।
7: द फॉलोइंग इज अ पेड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट बाय द अल जमाअ पॉलिटिकल पार्टी।
8: रेगुलराइजेशन एंड द अल्टरनेटिव political party for South Africa is the Al Jamaa effect. Roads will be fixed, refuse will be removed, and personal safety in your homes, streets, parks, and pathways to the local shops and shopping malls will be our top priority. Al Jamaa aim to regularize shack dwellers by giving them land tenure, regularize water and electricity supply by making it a reliable source. Vote for good governance, accelerated service delivery, excellence and the best of breed of councillors, mayors and mayoral committee members. That is the Al Jamaa effect. South Africa's alternative political party, the Al Jamaa effect.
7: That was a paid political advertisement by the Al Jamaa political party.
9: At this time of trial and worry, the blessings of charity are the ideal means to avoid calamity and despair. The Al Imdad Foundation gives you the opportunity to sponsor a share in a borehole in South Africa for just 1,000 rand and provide what the Holy Prophet, peace be upon him, called the best form of charity. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
10: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
11: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket.
12: For 360 Rand, a full winter pack, one gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
13: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda. Rejuvenating media day by day. This is Salam Media.
5: जी वेलकम करते हैं आपको मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी फ्रॉम जोहान्सबर्ग सलाम मीडिया और उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा. हमारे साथ मौजूद है नीलम असलम लंदन से और उनसे हम बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह इस्लामोफोबिया को रोका जा सकता है, ये जो फोबिया है इसको खत्म किया जा सकता है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है. अच्छा नीलम, आपसे बात हुई इस्लामोफोबिया पे, एक बड़ा खूबसूरत आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी. डेफिनेटली आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस है, अब थोड़ी आपसे आपकी गुफ्तगू की जाए जरा कि जो डाइवर्स एक्सपीरियंस आपका, माशाल्लाह पाकिस्तान में आपने बहुत काम किया जर्नलिज्म में, आपने माशाल्लाह बहुत कामयाबी दिखाई है, बहुत स्किल्स दिखाई हैं और उसके बाद आप माशाल्लाह यूके में बेस्ड हैं, तो आप क्या समझती हैं ये जो जर्नलिज्म है ये कंट्री टू कंट्री डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, इसके चैलेंजेस डिफरेंट है और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
6: आई थिंक अपना जर्नलिज्म जो है वो ज्यादा कमर्शलाइज मैं कह सकती हूँ कि हो गई है पूरी दुनिया में. अभी भी जो लोग जर्नलिज्म करना चाहते हैं और जर्नलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि जर्नलिज्म क्या है, एक खबर को रिपोर्ट करना, एक इशू को उठाना, किसी इवेंट के ऊपर रिपोर्ट करना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना, ये जर्नलिज्म है. लेकिन कमर्शलाइज अब मैं कह रही हूँ किस सेंस में हो गई, अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो भी खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने अंदाज में कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है कि वो इश्यूज को उठाते हैं. लेकिन उस खबर की क्या सेंसिटिविटी है, वो जो हम कहते थे कि मीडिया एथिक, वो कहीं ऑब्वियसली उनके पास, वी कांट ब्लेम देम, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है. तो हर कोई इंसान जिसके पास एक कैमरा आ गया, अच्छा जिसके पास महंगे तरीन फोन आ गया है, जिसने अच्छे तरीन माइक्स ले लिए हैं, वो और एक जर्नलिस्ट बन गया. तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन जर्नलिस्ट है या नहीं है. जो नहीं है जर्नलिस्ट, मैं उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन उनकी जो फील्ड है उसको सही तरह से डिफाइन होना चाहिए. पाकिस्तान में इस वक्त जर्नलिज्म हो रही है, गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की मैं एग्जाम्पल दूंगी, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको बढ़ाना आगे, उसको स्प्रेड करना, उसके ऊपर बात करना, पाकिस्तान में इस लेवल की जर्नलिज्म हो रही है. जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी, जो लोगों के इश्यूज से मुतालिक जर्नलिज्म होती थी, वो बहुत कम हो गई है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लेकिन 80% जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल आपको यूट्यूब के जरिए से दुनिया के किसी भी हिस्से में अवेलेबल है और वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स भी हैं, सारे सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनमें 80% जो जर्नलिज्म हो रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की जो भी न्यूज है उसको बताना है एज इट इज, जैसा वहां से आया है. ये भी जर्नलिज्म की एक फॉर्म जरूर है, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन बन गए. और मीडिया कभी भी कोई भी चैनल, कोई भी न्यूज वेबसाइट, किसी भी इदारे या किसी भी हम मुल्क का स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकता, वरना उसके लिए एक अलग टर्म यूज होती है हर कंट्री में, स्टेट मीडिया. तो स्टेट मीडिया चैनल एक ही होता है, सारे नहीं होते. तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ये डिलेमा है सबसे बड़ा. यहां तक जहां तक बात है बरतानिया की, बरतानिया में अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर लें कि एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो किस तरह से यहाँ पे सहाफत कर रहा है, तो उनकी सहाफत पाकिस्तान में होने वाली सहाफत से भी जो है वो मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी बुरी जा रही है, क्योंकि वो भी सहाफत को उन्होंने सिर्फ इवेंट्स को कवरेज की हद तक महदूद कर लिया है. इंडिया में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है पापराजी, दुनिया भर में यूज होती है कि वो कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि अगर कोई बॉलीवुड स्टार आ गया तो उसके जिम के बाहर भी पाए जाएंगे, उसके वो कहीं लंच या कहीं गए हैं वहां पे भी पाए जाएंगे, इवेंट की कवरेज करते भी पाए जाएंगे, और तमाम जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनको भी एज सेलिब्रिटीज ट्रीट करेंगे. जो सहाफी होता है वो चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत उसके सामने आ जाए वो उसको सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट नहीं करता. वो उसको एक खबर के तौर पर ट्रीट करता है, तो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की यहाँ पे जो जर्नलिज्म है उसका अहवाल है, बाकी बरतानिया का जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है आई थिंक पैलेस्टाइन को छोड़ के उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत फेयर जर्नलिज्म करते हैं, बहुत क्वालिटी जर्नलिज्म होती है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही हैं बहुत अच्छी हैं, चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्रीज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बीबीसी बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे इश्यूज में, यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सिर्फ डिसऑनेस्टी की है वो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर की है, या फिर हम कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये या तो उनको रिपोर्ट करना भूल गए हैं या उनको जो जिस तरह से उस इवेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए जितना एयर टाइम उसको मिलना चाहिए, मुस्लिम जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज जो बन रही है बहुत अच्छी है, चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्रीज को लोग

0: बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बीबीसी बहुत ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग करता है बहुत सारे इश्यूज में। यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सिर्फ डिसऑनेस्टी की है वो पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर की है, या फिर हम कह सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो जब मुस्लिम इश्यूज आते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि ये या तो उनको रिपोर्ट करना भूल गए हैं, या उनको जो जिस तरह से उस इवेंट की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जितना एयर टाइम उसको मिलना चाहिए मुस्लिम स्टोरीज को, उतना नहीं दिया जाता। तो कमियां हर कोताहियां हर जगह होती हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी मीडिया में और बरतानिया में।
1: सही, और यही हमारा मैसेज होगा कि जब भी आप जर्नलिज्म करें, फेयर जर्नलिज्म जरूर होना चाहिए, अपनी कवरेज जो है आप जरूर करें, और उसका जो प्रेशर है, डेफिनेटली ये प्रेशर जो है हर लेवल पे होता है, उस प्रेशर को जरा तरीके से मेंटेन करें। अच्छा नीलम, जाते जाते बस यही कि आपसे कि अच्छा कोई मैसेज दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाह रही थी कि जो नेगेटिव न्यूज है समटाइम उनको बहुत ज्यादा टेंशन मिलती है, और उसकी निस्बत जो पॉजिटिव न्यूज है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है, तो जाहिर है कंट्री का एक इमेज जो है वो नेगेटिव बन जाता है कि नेगेटिव खबरें दिन ब दिन आती जाती हैं। तो उस पे जनाब जी क्या कर सकते हैं, क्या मुस्बत तब्दीली हम ला सकते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और साथ ही अपना मैसेज भी दीजिएगा हमारी न्यू जनरेशन को।
0: मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि जो नेगेटिव न्यूज है वो तो नेगेटिव है ही है, उसको आप पॉजिटिव करके कभी रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अपनी प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी होगी। अगर कहीं किसी कंट्री में कुछ बुरा हो रहा है तो वो एज इट इज ही रिपोर्ट होगा, लेकिन लोग जो हैं उनका अच्छाई के ऊपर भरोसा रहे और एक वो
1: क्या
0: जो
1: बात
0: उम्मीद बहार है
1: जी,
0: वो रहे, उसके लिए आप उस कंट्री में यकीनन कुछ अच्छा भी हो ही रहा होगा, उस सोसाइटी में कुछ अच्छा हो ही रहा होगा। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन फिर एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार एडी भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पैदा हुए थे, पाकिस्तान में आतिफ असलम भी पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान भी पैदा हुए हैं, और इस तरह के और बहुत सारे जो हमारे डायमंड अनसंग हीरोज भी होंगे जिनका शायद अभी कोई नाम भी नहीं लेता, जो कि बड़ा बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे, तो उनको भी निकालने मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है वो सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव ना हो,
1: सही
0: उनको निकाल के सामने लाए तो वो मुस्बत खबर हो जाएगी, तो सबको पता चल जाएगा कि सोसाइटी में जहाँ बुराई है तो ये सोसाइटी हम सोचते हैं ना खड़ी कैसी है, पाकिस्तान चल कैसे रहा है, तो ये इन्हीं अनसंग हीरोज की बदौलत और जो बहुत ऑनेस्टी के साथ और सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे हैं मुल्क के लिए भी अपने लोगों के लिए भी, इनकी वजह से, इनकी दुआओं की वजह से और इनकी अच्छाई की वजह से पाकिस्तान खड़ा है, तो उन स्टोरीज को भी सामने लाया और वो भी सुनाए अपने नाज़रीन।
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया नीलम, आपके साथ बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही और बड़ा अच्छा आपका पैगाम जो है वो हमें मिला कि जहां आप नेगेटिव न्यूज पे बहुत ध्यान देते हैं वहां तकरीबन उस कंट्री की पॉजिटिव व्यूज जो है, पॉजिटिव न्यूज जो है वो भी आप जरूर निकालें, उनके लेजेंड्स को आप याद रखें, उनकी मेहनत और कोशिशों को याद रखें जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए की है। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश थी जैसे कि हम यहाँ जोहान्सबर्ग से अपने मुल्क को अपनी जुबान को प्रमोट कर सकें वो हमने किया, अब आपकी कोशिश की बारी, आप जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नीलम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां और कामयाबी करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।

0: In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
1: You know, it's a wonder how kids get anything done these days. With all the distractions, when do they even get time to study? As a mother, all I can really do is make sure they have all they need to perform at their best. That's why I choose to include Sunfoil triple refined pure sunflower oil with every meal I make. Naturally cholesterol-free and approved by the Heart and Stroke Foundation as part of a balanced eating plan. So whether I'm cooking, frying or baking, I know every dish will be a wholesome one. Sunfoil, now we're cooking.
2: When the perfect blend of stylish decor, exquisite halal cuisine and warm hospitality come together, it could only mean Al Bayt Lodge, your true home away from home. Al Bayt is the ideal heaven for families, business people and tourists with its four-star family rooms and other luxurious facilities. Conveniently situated close to Port Elizabeth Airport, the beach and other amenities, your stay will be truly unforgettable as you'll be taking home lasting memories of the warm hospitality, the serenity and tranquility that Al Bayt has to offer. For reservations, call 041-583-6415. Or visit www.albaytlodge.co.za.
3: Right now, over 150 million children around the world are orphaned, facing hunger, hardship, and uncertainty. With Islamic Relief's Orphan Sponsorship Program, you can provide a child with access to education, nutritious food, essential health care, and a safe home. Your sponsorship is not just support. It's hope, security, and a brighter future. Be the reason an orphan child smiles again. Sponsor an orphan today with Islamic Relief.
4: It's a new beginning. It's a new era. Salam Media. Humanitarian journalism. Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
5: जी वेलकम बैक करते हैं आपको जोहान्सबर्ग से मिड मॉर्निंग टॉक विद मरियम हाशमी प्रोग्राम में और प्रोग्राम में माशाल्लाह बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट जो हैं वो आज आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और अब आपको अपने एक बेहतरीन किस्म के गेस्ट से मिलवाते हैं बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है और उनकी अचीवमेंट की मैं क्या बात करूं माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें अचीव की हैं लाइफ में और सबसे बढ़कर जैसे मैं बात करती हूं कि जो कम्युनिटी वर्क है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी के लिए काम करना आसान नहीं है तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं जिससे जो है कम्युनिटी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले खुशी मिले और उसमें उनकी बहुत सारी जो है काविश है सबसे पहले तो जो इनका मेन काम है वो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट पे वो बहुत ज्यादा बात करती हैं और उनकी एडवोकेट है और बहुत ज्यादा उन्होंने इवेंट्स भी इस तरह के ऑर्गेनाइज किए हैं जिसमें वो प्रमोट कर सकें वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकें खवातीन को उनका सही हक और सही बात जो है उनकी बता सकें कि उनका क्या किरदार क्या वेल्फ जो है बेहतरीन किरदार जो है उनका किसी भी सोसाइटी में होना चाहिए क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि खवातीन जो है वो किसी भी शोबे में पीछे नहीं है वो जिस शोबे में भी जाती हैं अपना नाम भी मनवाती हैं अपना लोहा मनवाती हैं और जनाब बहुत ज्यादा जो है वो कामयाबियां जो है वो हासिल करती हैं तो माशाल्लाह वो लंदन में बहुत ज्यादा समारा इवेंट के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी को चेयर हैं और बहुत सारा इवेंट्स जो है वो ये कम्युनिटी के जो है ये बहुत करवाती हैं अवार्ड्स जो हैं सबसे मेन जो है बात ये है कि लोगों की जो अचीवमेंट है ये उनको सेलिब्रेट करती हैं जी हाँ अवार्ड सेरेमनीज जो है ये ऑर्गेनाइज करती हैं लोगों की जितनी भी आपकी कोशिश आपकी स्किल्स हैं ये उनको जो है सराहते हैं उनकी जो है अप्रिसिएशन एक छोटी सी अप्रिसिएशन है कि आप उनको अवार्ड से नवाजें और माशाल्लाह ये लंदन में अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं तो मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया. अस्सलाम वालेकुम मारिया.
6: क्या हाल है
5: जी मारिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मारिया कैसी हैं आप? कैसा है लंदन का वेदर? जोहान्सबर्ग का तो वेदर आज बहुत अच्छा है क्योंकि ये विंटर सीजन है, लेकिन लंदन में सुना है काफी गर्मी है, लेकिन अब काफी वेदर ठीक हो रहा है. आप क्या बताएंगी लंदन के वेदर के बारे में?
6: जी बिल्कुल, लंदन में तो इतना अच्छा मौसम है. We've had the longest summer in a long time. तो बहुत मजा आ रहा है. अब जब दिन छोटे होंगे तो फिर पता चलेगा.
5: सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लंदन के बारे में यही कहा जाता है जरा थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाता है विंटर, क्योंकि लोग जरा ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं उनका इखलाक बहुत अच्छा है, उनका दिल बहुत बड़ा है, और वो बहुत ज्यादा जो है लोगों को मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, और लोगों से जो है ना अपना जो है गेट टुगेदर करते हैं. आपके बारे में मैं यही बता रही थी मारिया कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा गैदरिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं, और आपका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को खुशी दी जाए. अपनी कम्युनिटीज पर तो आपका ध्यान है ही, लेकिन ये है कि वहां पर इतने लोग हैं वो एटलीस्ट इंजॉय कर सके, उनके मुंह पर उनकी छोटी सी स्माइल आ जाए, क्योंकि मुस्कुराहट भी खेरना भी एक सदका ही जा रही है, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है वो काम कर रही है. अच्छा मारिया, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे आप माशाल्लाह बहुत काम करती हैं, आपने इसी फील्ड को क्यों चुना, और आप क्या समझती हैं कि ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट हर वुमेन को पता होनी कितनी जरूरी है?
6: देखिए जो वुमेन एम्पावरमेंट है, देखिए वी फॉलो हमारे जो जनरेशन है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी जो दादी नानी अम्मी खाला, रोल मॉडल्स इन आवर लाइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने सोचा कि देखिए हमारी जो जनरेशन अबव है उन्होंने हमारे लिए एक इतना अच्छा रोल मॉडल साबित किया, तो हमारा भी काम है आगे टू बी अ गुड रोल मॉडल एंड एम्पावर वुमेन. तो मैंने 2018 में शुरू किए थे वुमेन एम्पावरमेंट एंड लेडीज नाइट, 3-4 इवेंट्स ऑन एनुअल बेसिस, एंड उसका बस ये मकसद था कि हमारी जो खावतीन है दे फील अप्रिशिएटेड, उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको हम आगे लेके जाए. देखिये हर जो खावतीन है उनके दुनिया जिंदगी में कोई ना मसले होते हैं, तो मुझे ये था कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ लोग अपने जो प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर करें, कोई हल उनको चाहिए हो वो भी हम उनको हेल्प करें, उसके अलावा एक एंजॉयमेंट का जो माहौल होता है वो होना चाहिए. It's all about empowering each other. And mashallah, यहाँ यूके के अंदर हमारी जो खावतीन है उन्होंने इतना कुछ अचीव किया. You know, we are very lucky कि हम यहाँ यूके में रहते हैं. It's a very diplomatic society. Women have so much strength and power to achieve what they want.
5: Right.
6: हम यहाँ आदमियों से बिल्कुल पीछे नहीं है. So we have the same ability कि हम भी अचीव कर सके जो हमें हमारे दादा
5: अबू फादर्स जी उन्होंने अचीव किया. अच्छा बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है मारिया कि आपके ख्याल में जो ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी है उसमें खवातीन अपना किरदार किस तरह मजबूत बना सकती हैं, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगी?
6: देखिये पहले तो ये है कि कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व हो,
5: राइट.
6: सेकेंडली आपको पता है कि पॉलिटिक्स इज अ वेरी बिग थिंग इन द यूके एंड आई एम इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स. मैं काफी एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, एंड यहाँ पॉलिटिक्स में बहुत हमारी खावतीन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं. तो इतनी हमारी फीमेल्स को यहाँ पता नहीं है कि हम कैसे पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं, कैसे हम एक चेंज लेके आ सकते हैं कम्युनिटी के अंदर थ्रू पॉलिटिक्स. तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारी खावतीन को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आना चाहिए.
5: राइट सही. अच्छा जो पब्लिक अपीयरेंस है, ये जो लीडरशिप है, ये कितनी जरूरी है? माशाल्लाह लीडरशिप जैसे आपने बात किया पॉलिटिक्स में है, और मैं अपनी ऑडियंस को भी ये बताती चलूं कि माशाल्लाह काउंसलर के इलेक्शन के लिए जो है आपका इंतखाब हुआ था, यू वर सिलेक्टेड फॉर दैट, और बड़ा मेरा तो ख्याल है कि काउंसलर की जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, प्रेशर भी. प्रेशर को कैसे हैंडल किया हमारी आपने उस टाइम पे?
6: सपोर्ट मेरे पास बहुत ज्यादा थी. एक तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट, फिर मेरे जो फ्रेंड्स थे जो इतनी दूर दूर से आते थे मेरी कैनवसिंग के लिए, ऑल ओवर द कंट्री से लोग आते थे हेल्प करने के. इलेक्शन डे के ऊपर लोगों ने मुझे हेल्प की. जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, इट इज सो वेलकमिंग. for females.
5: Right.
6: So hamara bas ye hai ki jitna bhi aap community ke saath kaam karenge, aap apne local counselors ke saath karenge, apne local council ke saath kaam karenge, utna aapko wo knowledge bhi hoga, utna aap aage bhi jayenge, and आप
5: एंजॉय भी करेंगे. राइट, बिल्कुल सही. अच्छा मारिया, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. माशाल्लाह जैसे इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करती हैं और गैदरिंग्स में स्पेशली वुमेन बेस्ड आपके इवेंट्स अगर जो उनकी हम बात करें, तो उसमें जो है आपका मकसद जो है जैसे कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग होती है या एक दूसरे की सपोर्ट होती है, तो ये सपोर्ट सिस्टम आप क्या समझती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है या इंडिपेंडेंटली भी आप अपना कुछ कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में?
6: आई थिंक When, वो कहते हैं ना कि एक बंदा या बंदी they can only achieve things limited amount. अगर आप combine करें लोगों के साथ आप काम करें, you can achieve a lot more. Because you can delegate जो आपकी responsibilities हैं. And community cohesion is very important. कि आप साथ में काम करेंगे तो आप और भी जल्दी आगे जाएंगे और ज्यादा आप अचीव करेंगे.
5: राइट. सो उसमें जो है आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है कि आप कम्युनिटीज से टॉक करती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज की अगर डिफरेंट सोच है, डिफरेंट उनके ख्यालात डेफिनेटली होते होंगे, उनको आप उसको कैसे ओवरकम करती हैं हमारी?
6: देखिए आपको ना एक असेसमेंट करनी पड़ती है कि ये कम्युनिटी से मैं बात कर रही हूँ, इनके क्या मसले हैं, इनके क्या इंटरेस्ट है, इनके क्या सोल्यूशन हमने ढूंढने हैं. अगर आप ये चीजों को समझ लेना तो फिर काफी इजीली आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं. डजंट मैटर कौन सी कम्युनिटी में वो यू नो पीछे से वो हो.
5: राइट. अच्छा मारिया, जैसे आपने काउंसलर की इलेक्शंस की मैं बात करूं, माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन आपकी रही है. अच्छा आपने लोगों से बात की है, लोगों से आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है पब्लिक लेवल पे, तो उसमें आप क्या, आपको क्या लगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इस एक काउंसलर से क्या होती है, क्या उनके मेन कंसर्न्स हैं? जैसे कि अपने पाकिस्तान के भी बहुत सारे कंसर्न्स हमें पता है डिफरेंट, लेकिन लंदन के लोगों के कंसर्न्स क्या हैं? आपको क्या लगा कि किस पे ज्यादा वर्क होना सिस्टम के लिए बेटर है?
6: देखिए जो काउंसिल के इलेक्शन होते हैं ना एज ए कैंडिडेट, वो होते हैं जो आपका वोट है उसके लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं. तो मेरा जो वोट था वो चीज़े कनस भी था. तो इट्स अ वेरी लवली नाइस एफ्लुएंट एरिया, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कैफेज है, कम्युनिटी है. ज्यादा उनका ये होता है कि you know keeping the parks green, jo streets hain unko saaf rakhna, to make sure that there's law and order in the area, to inspire our youth, more youth centers, more opportunities for the youth, getting youth off the streets, right, and getting them to do things more practically. And zyada ye hota hai ki jo locality hoti hai na wahan cheeze sahi चलनी चाहिए.
5: सही. अच्छा अच्छा, लोगों के पीछे हर कामयाब शख्स के पीछे किसी का हाथ होता है. आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर देना चाहेंगी, किसको देना चाहेंगी कि आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम कौन था?
6: देखिए सपोर्ट सिस्टम होता है कि जो आपकी फैमिली होती है. माय हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव. उन्होंने ऑलवेज मुझे पुश किया कि ये चीज तुम कर सकती हो और तुम्हें करना चाहिए. उसके अलावा my father, who's no longer here, he was a very ambitious man. And, you know, even his, you know, input in my life was very, very important. And phir jo ghar ki jo khawateen hoti hai, jo dadi, nani, ammi, my mother-in-law, to ye sab ke jab journeys mein dekhti hu na, to wo mujhe inspire karti hai ki maine hatke thoda sa aur unke unse thoda sa aage jana hai जिंदगी के अंदर.
5: ये कितनी जबरदस्त बात है. इट्स टाइम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक. मारिया से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एंड विल कम बैक जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स. सो स्टे ट्यून्ड ऑन सलाम मीडिया फ्रॉम जोहान्सबर्ग.
3: राइट नाउ इन सम ऑफ द मोस्ट डेविस्टेटेड पार्ट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, प्लेसेस क्लोज टू मेनी ऑफ आवर हार्ट्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इज डिलीवरिंग इमरजेंसी मेडिकल केयर वेयर नो वन एल्स विल. योर डोनेशन गिव्स अ चाइल्ड सर्जरी, अ फैमिली क्लीन वाटर, अ कम्युनिटी अ फाइटिंग चांस अगेंस्ट डिजीज. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर गिविंग काउंट वेयर इट्स नीडेड मोस्ट. Visit msf.org.za/sadaqa, that's SADAQAH, and donate today. Doctors Without Borders, we go there.
7: Discover the Africa of your dreams and surround yourself with her spectacular beauty. Relax beneath her serene sunsets and explore wildlife at its natural best. It's where the pride of Africa comes together. The Kwantu Private Game Reserve. Get to know the Big Five or cruise on an elephant safari game drive. Interact with lion and tiger cubs and enjoy world-class halal cuisine while we pamper you during your five-star stay. Indulge in the true African experience. For reservations, call now on 042-203-1400 or visit kwantu.co.za. The Kwantu Private Game Reserve, the place of gathering.
8: World-class financial services only at Safi Global, your financial partner. If you are looking for Islamic, Sharia and ethical financial products, look no further. Sapphire Global offers a wide range of financial service offerings from short-term to life and investments. A full-service center with all financial requirements under one brand. Our highly skilled and experienced consultants are ready to help protect your financial future. Contact us on 041-001-0184 or visit our website on www.sapphireglobalfs.com. Sapphire Global is an authorized financial services provider.
9: Tonight, a child in a shack will try to sleep through the cold. No heating, no insulation, just thin walls and a biting cold. African Muslims Agency is on the ground, reaching families in informal settlements across South Africa with blankets and winter essentials. Help us spread warmth this winter. For 180 Rand, give a blanket. For 360 Rand, a full winter pack. One gift, one less night in the cold. Africa Muslims Agency. Empowering, educating, inspiring.
4: Rejuvenating media day by day. This is Salam Media. Listen to something fresh. Listen to Salam Media, your humanitarian broadcaster.
5: Welcome back, program Mid Morning Talk with Maryam Hashmi from Johannesburg, South Africa. Ji haan, Salam Media se hum live hain aur hamare is program ka maqsad jaise aapko pata hai ki yahi hai ki hum apni Urdu language ko promote kar sakein, apni wo khawateen jo duniya mein bahut behtareen kaam kar rahi hain aur kuch na kuch duniya ke liye, community ke liye, apne mulk ke liye kar rahi hain, unko hum is platform ke zariye connect kar sakein. Hamare sath maujood hain Maria aur Maria se bahut achi guftugu chal rahi hai. Jaise maine inki introduction mein bataya ki mashallah bahut cheeze jo hain wo kar rahi hain community ke liye. उनमें सबसे एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने लिहाज से भी कहूंगी कि मुझे जो चीज बहुत पसंद आई है वो ये कि वो दूसरों की सलाहियतों को सराहती हैं. जी हां, वो जो अवार्ड सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज करती हैं और लोगों को अप्रिशिएट करती हैं उनकी काविशों के बारे में. तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, जी मारिया, मैं आपसे मेन क्वेश्चन ये करना चाहूंगी, ये बहुत बड़ी चीज है अवार्ड देना किसी को, किसी की सलाहियतों को समझना और उसको अप्रिशिएट करना. ये ख्याल आपको कहां से आया, कैसे आया, और फिर इसमें आपको कोई अगर चैलेंज भी है वो भी हमसे डिस्कस कीजिएगा, और इंप्रेसिव मूवमेंट जो है या प्राउड मूवमेंट जब आपने किसी को उसकी एबिलिटीज के मुताबिक आपने उसको प्रोवाइड किया. एक अवार्ड है वो किसी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, वो आपने किसी को दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसकी क्या फीलिंग थी आपकी, आप जरा प्लीज इस पे रोशन डालिए.
6: मरियम, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम करने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है. जैसे मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रही हूँ कि देखो आपने इतना कुछ अचीव किया है और आप इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बैठती हैं जहाँ हम आप हमें आगे लेके आती हैं. सो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के काम कर रही हैं, एंड आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि यूर अ रोल मॉडल एज वेल, एंड आप इस तरह का अपना काम जारी रखें. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट वी ऑल अप्रिशिएट द वर्क दैट यू डू एज वेल, एंड दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जो अवार्ड्स है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है बिकॉज उसका ये मकसद होता है कि एक अप्रिशिएशन किसी की मेहनत उनकी जर्नी उनकी जो लाइफ टाइम की मेहनत है उसको रिकग्नाइज करना. अब 16 साल पहले मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स. अल्हम्दुलिल्लाह से 16 इयर्स हो गए हम पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स को रन करते हैं एंड वी रिकग्नाइज पाकिस्तानी ग्लोबली हु एक्सेल्ड इन देयर फील्ड. एंड हम करते हैं हर साल 14 अगस्त को 14th August because it's Jashn-e-Azadi for Pakistan. And hamara sabse bada jo achievement tha na Pakistan achievement award tha.
5: Bilkul.
6: Ab 16 saal pehle mere husband ne shuru kiya tha Pakistan achievement awards. Alhamdulillah se 16 years ho gaye hum Pakistan achievement awards ko run karte hain. And we recognize Pakistanis globally who have excelled in their field and hum karte hain har saal 14 August ko. 14th August because it's Jashn-e-Azadi for Pakistan. And hamara sabse bada jo achievement tha na Pakistan achievement awards ka ke mere husband ki ek dream thi ki unhone Pakistan ka flag dekhna tha Wembley Arena ki stage ke upar.
5: Kya baat.
6: That was his dream. And alhamdulillah Pakistan ki 75th birthday pe humne ye khwab pura kiya jahan 12,000 Pakistanis came to celebrate Pakistan's 75th birthday.
5: Mashallah.
6: At Wembley Arena. So in our 16 years that's been our biggest achievement.
5: It looks like
6: to actually celebrate in Pakistan's 75th birthday, which is an iconic birthday, at the iconic Wembley Arena with Pakistan's flag on the stage. That was our biggest achievement.
5: And that's amazing, man. That's really amazing. बहुत जबरदस्त. और देखिए आपसे जब हम जुड़ते हैं इस तरह के लोग जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए तो ये recognition मेरा ख्याल है आपको भी मिलनी चाहिए और ये बड़ी छोटी सी effort है कि मैं आपको आपके साथ ये program कर रही हूँ और आपके जरिए पूरी दुनिया को message जा रहा है कि आप at least London में अपने मुल्क के लिए पाकिस्तान के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए कितनी जो है वो मेहनत आप कर रही हैं.
6: देखिए पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है ना आगे लेके आना वो बहुत जरूरी है
5: और ये जिम्मेदारी है हमारी.
6: जी बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज हम पाकिस्तानी कोई भी फील्ड में पीछे नहीं है एंड यही मकसद है कि हम हर साल एक ब्रिटिश पाकिस्तानी पावर 100 लिस्ट निकालते हैं एंड उसके अंदर हम जो टॉप 100 पाकिस्तानीज हैं उनको हाईलाइट करते हैं. उसकी बहुत मेहनत लगती है उस पब्लिकेशन को पब्लिश करने के लिए बट वो एक हमारी एक अचीवमेंट है कि हर साल ब्रिटिश पाकिस्तानी पावर 100 लिस्ट हम निकालते हैं. उसके अलावा हम करते हैं ब्रिटिश एशियन हूज़ हू अवार्ड्स. दिस टेक्स प्लेस एट द आइकॉनिक वोई होटल. एक ही सवोई है पूरी दुनिया के अंदर
5: right.
6: तो वहाँ हर साल वहाँ होता है तो 5 साल हो गए फॉर ब्रिटिश एशियन हू अवार्ड्स. उसके अलावा हम करते हैं ब्रिटिश एशियन मीडिया अवार्ड्स. So we recognize people within the media industry. Unko recognize karte hain, unki achievements ko recognize karte hain, unki journey ko recognize karte hain. Uske alawa, aapko pata hai, yahan UK ke andar jo khane peene ka mahol hai, zabardast hai. Jo restaurant industry hai, hum ek award ceremony organize karte hain. It's called Asian Food and Restaurant Awards. And alhamdulillah se 11 saal ho gaya is award ceremony ko. This is our 11th year and the next one is happening on the 7th of December. So we recognize jo restaurateurs hai, wholesalers, cash and carries, caterers, venues, food brands. Aapko pata hai, hamari Asian food brands itne hai UK ke andar. Right now. So ye both hamara ek successful award ceremony hoti hai on an annual basis. And puri food industry ko drinks industry ko puri industry ko hum recognize karte hain. And ye bhi central London mein hota hai. To inshallah this year will be happening. Uske ilawa hum kafi aur community ka kaam karte hain. Chand raat karte hain. Chand raat Eid exhibitions. Kafi influencers hamare saath kaam karte hain. Kafi influencers ko hum wahan recognize karte hain chand raat ke upar as well. And chand raat is a very community event. Eid aane wali hoti hai, logon ne roze rakhe hote hain,
5: exactly,
6: you know,
5: excitement hoti hai. जी एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल सही. नहीं भैया, और जैसे कि आपने कितनी खूबसूरत बात किया कि ये बड़ा एक मैसेज है कि आपने हर

0: एरिया को कवर किया है कि उसमें आपने किसी को लेफ्ट आउट फील नहीं कराया कि भाई सिर्फ अवार्ड सेरेमनी जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन के लिए या स्पेसिफिक जो है मीडिया के लिए हो गई या किसी और चीज के लिए. आपने तकरीबन रेस्टोरेंट्स, फूड्स, हर डिपार्टमेंट को आपने कवर किया. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जाहिर है ये सोच लेकर आना और फिर सोच को एग्जीक्यूट करना, उस पर अमल करना, उसको अमली जामे पहनाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और मेरा ख्याल है कि हमारी आज की ऑडियंस को भी ये बहुत सुन के अच्छा लगा होगा कि कोई किसी कंट्री में बैठकर, दुनिया के किसी कोने में बैठकर जो है मुल्क के लिए कितना कुछ कर रहा है. हमारी बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ और आपके साथ का बहुत शुक्रिया. और बस ये कहना चाहूंगी कि कोई मैसेज आप देना चाहें जो खवातीन लीडरशिप में आना चाहें या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आपको मैसेज हमारी यूथ को देना चाहें तो प्लीज दीजिए.
1: देखें, कोई भी काम के लिए मेहनत लगती है, मेहनत के अलावा डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है और पैशन बहुत जरूरी है. तो मेरा बस यही है कि आप इवन इफ यू डोंट मेक इट फर्स्ट टाइम राउंड, कीप ट्राइंग. आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए बिकॉज कोशिश के साथ आप अपने जो रिजल्ट्स है वो यू नो सक्सेस लेके आएंगे. एंड जस्ट कीप गोइंग एंड स्टे इन योर लेन. आपको पता है कि कम्युनिटी के अंदर काफी चीजें होती है कि देयर विल बी टाइम्स वेयर यू फील लेट डाउन, देयर विल बी टाइम्स यू विल फील दैट other people are trying to pull you down. But no, stay in your lane, carry on with determination and only have one goal, ke maine ye cheez succeed karni hai aur maine ye cheez hasil karni hai, and that is your success.
0: Yeah.
1: And jo bhi aapke you know competitors hai, jo aapke irgird jo bhi kar rahe hai, don't let it bother you, just keep going.
0: Yeah, and don't give up. बहुत अच्छा मैसेज था. और मारिया के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इतनी एफर्ट करिए, इनकी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा कि इनके भाई के लिए ये बहुत ज्यादा दुआ के लिए कहती हैं, तो उनके लिए आप प्लीज उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इतने लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए इतना काम करते हैं, उनको वैसे तो दुआ की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब भी आप हाथ उठाएं तो जरूर मारिया और उनकी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा. बहुत शुक्रिया मारिया आपके इस खूबसूरत साथ का और बहुत अच्छा लगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह
1: Allah Hafiz. Jazakallah.
0: Jazakallah.